0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: बदमेन्ना मुसबी मंबो बकिंग स्टाइलर.

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो